Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki in amatan argument ada kurmuga farwatirum gasobum madama qiyam edhum argument na emme bodu kamiyabi libigen dane amal namada behigotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam argument na bayan kodivani alage amal toge teren ena kuffawa kankamuge teren emme furtama qiyam edhum hisab billeve hushi namada behigotun ए नमादु के हिसाब और अंगलों वे जिकम अव्वानमा ए नया कामयाब वे फलाहुली भिज्जे माने कि सुअरों के गहुलेरी कमगा ए ना वेगी हिंगज्जे ए नमादुं मुनीवे मधु वे जिकम अव्वानमा नोत ए नमादु हिसाब करेवे इरुगा ए नमादु फुरिहम इफानुआ कम अव्वानमा ए ना कि गेल्ले निवे हलाकु इफावा मिह के फरुल नमात कामे दुगा हिसाब करेवी ए नमात होगा उनी कम अव्वा कम अव्वानमा दिन अल्लाह सुबहानहु व तआला वही कुरववे तिमन इलाहु गे अलागे सुन्ने नमादु तक बला ए नमादु तकुं फरु नमातोगे मिमवरो हम कुराश एहेदुगा एनागे सुन्ने नमातु तक बेलेवी ए नमादु तकुं एनागे उनीफाबा फुरिम कुरववे कमवानामा एकं कुरववे एफद हालतेगा अगुन में नामेदुगा हिसाब कुरवगेन दायरुगा लबती अखुना अख्तुने फरुल फस नमादु एगे वगुतुगा अदा कुरमा एकुगा hama ehimme e namatoga unikamen huredane kamattaka argonmen e namatoga isfahuga kuruma sharu kurefawa rawatib sunnetaka adivis duha namada adi hama ehimme reganduge vituriya mifada alukanta kurumuga argonmen farwaatiriwan ebeje sunne namada ki argonmenge faru namaduga hunna unikan fubaddala de kamaka vuma ekuga hama ehimme farul namadan algolmenna libigenda warabodu hivvari kamuga vegenda enkamun algolmen farul namataka adi hama ea gulifawa sunnetan ada kurumuga farwaatir velawa ma hingawa wa akhir da'wana anil hamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh